ऐ बाशो री बावानी ने ही राजा फिर एक हो आवानी रे रे का इड़ा कोई मान गा वामा के को हाँ वाई खायो मा एक कासी वाले दे आड़ा बड़ा शो बड़े कनो आदि दी ठाबो डाले बड़े कनो आदि दी निया ठाबो यारो आ हिरे बे आवानी बाताई एठे आवानी दिखे गया मा बे इमा कोई एदे आराय ह एबे येमे गारा हे हुओ मबोर एबे येमे गा हे हुओ दा बरा छ आ आनो आनो आनो आथा आनो आथा बो गाइना दा गो बारु हे आनो आथा बो गाइना दा गो बारु हे छ हु